आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

नमस्कार, मैं नाईकोड़े नगर तालुका मोहोड़ जिला सोलापुर से सरपंच शेख बोल रहा हूँ। मैडम, आप सोच रही होंगी कि अचानक ये बर्थडे वाले गाने से कैसे आज सरपंच शेख ने शुरुआत की, तो बताना ये चाहता हूँ कि आज मेरे भतीजे आजम इसका 14वां बर्थडे है और इसके मौके पर मुझे आज एक गाना भी सुनना है। वो हम गाना भी सुनेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पर जो अखियों के झरोकों से फिल्म का गाना सुनाया मेरी फरमाइश पर, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। वो गाना जब भी मैं सुनता हूँ तो वो खासकर वो अंतरा जो आपने सुनाया था, मैं जब से तेरे प्यार के रंगों में रंगी हूँ, वो जब भी सुनता हूँ तो मुझे आपकी याद आ रही है। ऐसा लगता है कि वो हेमलता नहीं गा रही बल्कि आप ही गा रही हो, ऐसा मुझे लगता है जब भी मैं वो गाना सुन रहा हूँ किसी और चैनल पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, और आपके जो भी शो हुए हैं, बिग स्टार हो या स्वर बहार, जितने भी शो हुए हैं बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ही पसंद आए। आज के इस कार्यक्रम में मुझे जो गाना सुनना है मेरे भतीजे आजम शेख के लिए, वो है आई मिलन की बेला। इस फिल्म का लता मंगेशकर का गाया एक गाना है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो गाना है वो मुझे डिजिटल झनकार बीट्स में चाहिए।

0: तमन्ना, ये गाना मुझे सुनना है। और इस गाने को सुनने के लिए कुबीर मस्के, आजम, इरम, कबीर, सरफराज, सूफिया, भाभी फरजाना, हुसैन और अमोल कांबड़े, सचिन जी है, इन इरम, इन सब के लिए, इन सब के साथ मुझे गाना सुनना है मैडम, और जरूर सुनवा दीजिए।
1: थँक्यू सो मच सैफान शेख सर, तुम्ही एवढं छान कौतुक केल्याबद्दल आणि इतर देखील कार्यक्रमाबद्दल तुम्ही सांगितलं म्हणून त्याबद्दल देखील आभारी, आणि खूप छान तुम्ही आज देखील गाऊन दाखवलं त्याबद्दल खूप आभारी आहे। लाईकवाइज सैफान शेख सरांची व्हॉट्सअप फरमाइश।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: संगीत आपल्या मनाचा आरसा, संगीत आपल्या मनाचा संवाद, गाणी जी साकवतात आपल्या मनातील भावनांचे तरंग, हृदयस्पर्शी गाणी, मन स्पर्शून जाणारी गीत, साद घालणारे आवाज, ऐका आमच्या हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमातून। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
0: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
0: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
2: पहले तुम,
0: पहले तुम,
2: पहले तुम,
0: पहले तुम,
2: तुम,
0: तुम,
2: तुम,
0: तुम,
2: तुम,
0: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: देखो शबनम शराब हो गए,
1: हो देखो शबनम शराब हो गए,
0: देखो शबनम शराब हो गए, देखो शबनम।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल।
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये दे।

0: बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।